वेलकम बैक टू एवरीबडी। आपने एंजॉय किया ये गाना। एंड अब बात करते हैं कम्युनिटी की, लोकल खबर की। तो लोकल खबर ये है कि धरम के बच्चों के लिए टूल्स फॉर स्कूल्स बैक टू स्कूल ड्राइव शुरू हो चुकी है। मौसम का ताज़ा हाल ये है कि I-40 पर ड्राइविंग एंड विजिबिलिटी अभी बिल्कुल परफेक्ट है I-40 पर। बॉलीवुड से एक थोड़ी खबर ऐसी है कि कई सितारे असम पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है। कहानी यह है कि भूमि पेडनेकर और सिंगर पापॉन ने वीडियो शेयर कर लोगों से दान करने की भावुक अपील की है। एंड इस इंसानियत के नाम दो लाइनें, दर्द किसी का भी हो जब दिल भर आता है, इंसान वही है जो मुश्किल में काम आता है। ज़रूरत है एंड ज़रूरतमंदों की मदद करना हमेशा कारगर साबित होता है और वो करनी भी चाहिए। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो।

0: easy entry. Every day open between 5 PM to 10 PM, Monday to Sunday. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 Davies Drive, Morrisville. कॉल करें 9842540111. रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: शो पर मस्ती का कारवा जारी है। आज की लोकल खबर है कि अगर आप सोमवार की शाम बिना भीड़ के बिताना चाहते हैं तो रैली के आउटडोर स्कल्पचर पार्क्स आज के लिए बेस्ट है। वेदर अपडेट यह है कि रात होते होते तापमान 70 डिग्री फॉरेनहाइट में आ जाएगा, जो वॉक के लिए अच्छा है। बॉलीवुड में इन दिनों आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा के एक्शन सीन्स इंटरनेट पर छाए हुए हैं। कहानी यह है कि आलिया पहली बार इस स्पाई यूनिवर्स में एक खतरनाक फीमेल एजेंट का रोल कर रही है। एंड यह ऐसा था कि अल्फा जो फिल्म है पहले दर्शकों ने ना पसंद की, लेकिन धीरे धीरे फिल्म पॉपुलर होते हुए नजर आ रही है। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो आपके रिव्यू प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड यस, पता तो चल रहा है कि फिल्म काफ़ी अच्छी है। एंड इसी खबर के बाद एंजॉय करते हैं अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मस्ती जो है हमारी जारी है, साथ ही में मौसम जो है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। अब वक्त है शाम के अगले दौर का। आज की लोकल न्यूज स्पोर्ट्स लवर के लिए है। हमारे कैरोलिना हरिकेन्स के स्टार सेबेस्टियन अहो इन दिनों चर्चा में है। वेदर का हाल ये है कि तूफान के बाद आसमान में इस वक्त सुंदर ढलता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। एंड बॉलीवुड की बात करें तो रणबीर कपूर की रामायण के डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स को लेकर बड़ी डील हुई है। दिलचस्प स्टोरी यह है कि अहो अपने बर्थडे पर स्टैनली कप को फिनलैंड को एक म्यूजिक फेस्टिवल में लेके गए, जहां उनका रॉक स्टार स्वागत हुआ। इसी खुशखबर पर सुनते हैं अगला गाना। एंड स्ट्रेस नहीं लेने का है यार, मस्ती में चलने का है। एंड काम रहिए, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अपने सामने वाले व्हीकल के साथ। एंड देरी किस बात की है यार, खुश तो होना सब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: जब चाहे

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

जिसका जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान होती है, हौसलों के आगे तो फिर दुनिया भी झुकती है। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड में यही कह रहा था, अगर आपने ठान लिया है कि आपको जीतना है तो एट एनी कॉस्ट यू विल डू दैट, लेकिन आपने हार मान ली है, आप अपने आप से ही हार गए हो, लोग भी मिलते हैं, तुझसे ये नहीं होगा, अरे नहीं वो चीज़ नहीं होगी, अरे मुमकिन ही नहीं, यहाँ पर जाओगे तो नहीं होगा, ऐसे लोगों को ना पहले आपके जो लाइफ में से दूर हटा दो। ये लोग डीमोटिवेट करते हैं, इसलिए आप लोग जो है आगे बढ़ नहीं पाते, ये मेरा कहना मानिए, है ना। जीत का जज्बा जो है वो हमेशा अपने अंदर छिपा के रखें एंड किसी के साथ शेयर ना करें कि आपको क्या करना है, अपने अपने कदम जो है वो आगे आगे डालते रहिए और आपको मिलेगा, बस आपसे अपने आप से हारना नहीं है आपको। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, एंड इस खूबसूरत शाम में ये गाना तो बनता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुन रहे हैं रेडियो हैरा पटी बना नाइट्स एंड रास्ते का सफर बढ़ रहा है। लोकल खबर यह है कि साउदर्न बारबेक्यू और इंडियन रेस्टोरेंट्स में आज मंडे इवनिंग पर अच्छी खासी रौनक है। एंड मौसम की बात करें तो ह्यूमिडिटी अभी भी 75% के आसपास है, इसलिए बाहर निकलते ही थोड़ी गर्मी लग सकती है। शाहरुख और सलमान खान की दोस्ती के चर्चे सोशल मीडिया पर फिर ट्रेंड कर रहे हैं एंड कहानी यह है कि दोनों एक नए प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही साथ आ सकते हैं, करण अर्जुन है ना। तो मतलब ऐसा है, खबरें तो छाई हुई है, अभी पता नहीं है अंदर की बात क्या है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये तो पता चला है कि शाहरुख एंड सलमान दोनों ये जो मेगा हीरोज है 90s के हमारे, वो साथ में आ सकते हैं। कौन सी फिल्म रहेगी, क्या रहेगी, जैसे ही अपडेट आता है आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

साथ आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड I-40 और US-1 पर। इस वक्त शाम का ट्रैफिक काफ़ी धीमा है, गाड़ियां रेंग रही है एंड उसके बाद ऐसा है कि काफ़ी अच्छा है, मौसम तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड वही मैं कह रहा था कि यार बहुत एक आदमी, एक लड़का या एक लड़की ग्रुप में होती है कि हमेशा डिमोटिवेट करती है, तुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे रिस्क क्यों ले रहा है, कंफर्ट जोन में रहे, अच्छी खासी जॉब तो तेरी चल रही है, फिर और ये इनकम सोर्स क्यों बनाना है, क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्यों ये करना है, अरे भाई तू रहने दे, तेरे से अगर नहीं हो रहा तू मत कर लेकिन मुझे तो करने दे। ऐसे लोगों को लाइफ से थोड़ा दूर करना है, क्योंकि जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं उसी तरह से हम भी काम करने लगते हैं। तो याद रखिए, हमेशा जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

ट्रायंगल के दोस्तों, अगली लोकल खबर कैरी और मॉरिसविल एरिया से है, जहाँ इस समर वीकेंड्स पर इंडियन कम्युनिटी के कई इवेंट प्लान हो रहे हैं। एंड मैं यही कह रहा था कि श्रद्धा कपूर की आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म का जो है वो क्रेज बन चुका है। कहानी ये है कि फिल्म की एडवांस टिकट भी अभी आसमान छू रही है। हॉरर कॉमेडी का बहुत ही ज़्यादा अभी क्रेज़ चल रहा है। जैसे स्त्री मूवी आई थी तो स्त्री मूवी के बाद तो बहुत ही पिक कर लिया है। एंड श्रद्धा इज़ लाइक दैट, कि श्रद्धा को हमने देखा था आशिकी 2 में, उसके बाद जो उनकी फिल्में आई, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो श्रद्धा ने प्ले किए हैं। एंड श्रद्धा हमेशा ही कुछ नया लेकर आती है। एंड फिटनेस के प्रति भी वो बहुत जागरूक है, बहुत सारी चीज़ है। एंड उनका जो ज्वेलरी का ब्रांड भी है, उनमें भी वो बहुत आजकल एक्टिव होते हुए नज़र आ रही है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा। पक्का देसी।

0: every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड खबर यह है कि वेक काउंटी के पार्क्स में बच्चों के लिए समर कैंप्स के आखिरी कुछ हफ्ते बचे हैं, जहां काफ़ी चहल पहल है। मौसम का हाल यह है कि रात की हवा में अब थोड़ी ठंडक महसूस होने लगी है। बॉलीवुड के गलियारों से खबर है कि विकी कौशल की नई एक्शन फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है। कहानी यह है कि विक्की ने इस रोल के लिए करीब 4 महीनों तक कड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है एंड विकी कौशल तो हमें हमेशा ऐसे ही नज़र आए हैं कि वो उनके फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा जो फिजिक है बनाने में लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का होता है, कैरेक्टर के हिसाब से वेट गेन करते हैं, देन वेट कम भी करते हैं, इट्स लाइक अ मैजिक ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है वो एक कलाकार ही जान सकता है। एंड यू नो अच्छा फिजिक मेंटेन करना भी यार बहुत अच्छी बात है। वेल फिजिक से याद आया कि आपका वर्कआउट कैसे चल रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारायण निर्माता नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। दोनों का ये जादू जब दिल को छू जाता है तो हर उदास लम्हा फिर से अपने आप मुस्कुराता है। जी हाँ, यही तो वैल्यू है म्यूज़िक की। मतलब म्यूज़िक तो लाइक यू नो वैल्यू बहुत हम सोच भी नहीं सकते यार, इन्फिनिटी वैल्यू है म्यूज़िक की। म्यूज़िक इज़ द ओनली थिंग कि आपका मूड बना देती है एंड इट्स अ थेरेपी मुझे तो लगता है। मतलब बहुत सारी जगहों पर तो अलग अलग राग होते हैं, स्पेशली ये मॉर्निंग में ये राग सुनना चाहिए, आफ्टरनून में ये राग सुनना चाहिए, तो आपका मूड जो है वो फ्रेश रहता है। एक्चुअली म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। बहुत लोग म्यूज़िक का थेरेपी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा कि काम करते करते गाने सुनते रहते हैं तो उनका काम अच्छा होते रहता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ म्यूज़िक और वही हम एंजॉय करने वाले हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पनीर वन ऑन नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। आज मंडी ब्लूज को दूर करने के लिए विशेष लाइव गिटार सेशन रखा गया है। कहाँ पे तो बताता हूँ। लोकल खबर के अनुसार बॉक्स यार्ड आरटीपी में आज मंडी ब्लूज को दूर करने के लिए विशेष लाइव गिटार शो रखा है। आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मंडे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है एंड आप गिटार के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ का जो है वो मज़ा ले सकते हैं। एंड दीपिका पादुकोण और जो फैशन की मैगजीन है हालिया फैशन मैगजीन कवर की तस्वीर वायरल हो गई है। कहानी ये है कि इस क्लासिक विंटेज लुक को इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स ने तैयार किया है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा ये इनका पोस्टर जो है वो बना हुआ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: तेरे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा।
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah.
2: Heartbeat.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स एंड मैं हूँ आपके साथ साथ से 10 मेरा ये शो चलता है, मिटाता हूँ मैं आपका स्ट्रेस, बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। काफी अच्छा दिन था आज, मंडे का मोटिवेशनल दिन था, बहुत सारे लोग अपने घर पे पहुंच गए होंगे एंड अपने लव वंस के साथ डिनर कर रहे होंगे। अगर आप आज भी अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो एक साथ तो लकी हो आप। अभी क्या होता है यार, प्रैक्टिकल चीज़ें है कि बहुत लोगों का टाइमिंग्स जो अलग होता है, लेकिन पुराने ज़माने में आज भी याद है कि हम बहुत सारे लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो आज भी अगर आप खाना खा रहे हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ तो यू आर लकी। तो यही कह रहा था, धीरे धीरे यार 7 से 10 का ये टाइमिंग अगेन आपके साथ बातें करते करते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कल मिलूंगा आप सभी से इसी टाइम पर रेडियो नायरा पर। निर्वाणा नाइट्स मेरा शो चलता है, 7 से 10 मेरा ये शो चलता है एंड बात जो दिल से निकलती है वो तो असर रखती है। जी हाँ, बात जो दिल से निकलती है वो तो असर रखती है, हर कला यहाँ अपनी एक अलग नजर रखती है। मिलूंगा कल आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोका।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोक.

सुनते रहिए रेडियो नारा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नारा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। आप सुन रहे हैं नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीछे।
1: Hi guys, this is Aditya. Hope you like the song Chand Baliyan. Comment below and share your thoughts with me.
0: ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे।
2: Music channel, Diamond Music present.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

नाजनी हो, सादिसी हो, आशिकी हो, मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी, मैं एक लड़का हूँ, तुम मेरे बाद भी हो।

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, Pakka Desi, Pakka Local.

रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।

Hello people, good morning, good morning. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल ऑन 99.9 FM HD4 11.9 FM 4090 AM. मैं हूँ आयुषी एंड आप सभी का स्वागत है जरा मुस्कुराओ में. Yes, it's a new dawn, it's a new week, and it is actually the last week of this month. And I have no words for the fact that July bahut hi fast beat gaya hai. Pata hi nahi chala. It is 20th, 3 din mein khatam. My goodness, I mean, second half shuru ho ke uska pehla mahina khatam bhi ho gaya. Ab mujhe thoda sa existential crisis zyada ho raha hai. Like it has deepened after the fact that I just realized ki arre July bhi khatam hone aa gaya hai, second half shuru ho ke uska pehla mera khatam bhi ho gaya hai. But yeah, here we are. Hum apna kaam to jari rakhenge, hum aapko jo bhi taza khabrein hain wo to batate hi rahenge, hum aapko aapke favorite Bollywood ke gaane sunate rahenge taki aapko motivation mile to make sure ki you are taking care of your goals. Ki nahi hame first half mein ye karna था, सेकेंड हाफ में हम ये करेंगे एंड आपका काम होता रहे, हमारा भी काम होता रहे, बिकॉज वो एनर्जी आप हम तक पहुंचाते रहे, ऐसा हम जरूर होप करते हैं. सो या हियर वी आर अगेन, दिन की शुरुआत कर रहे हैं ताज़ा खबरें, लॉट्स ऑफ फेवरेट बॉलीवुड के गाने, व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रायंगल, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. इसलिए आप भी कहीं मत जाइए, मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ. सुनते रहिए नायरा राली ड्रम, मेरे यानी कि आयुषी के साथ. स्टे ट्यून्ड.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Hi Carrie, get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
2: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
3: Dosa Bundi, authentic flavors, inspiring journeys made with
4: you
3: love.
4: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22-carat gold and 18-carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest refinancing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3838.
5: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए
6: तो 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मंगवायूशियन आप सुन रहे हैं सरा मुस्कुराओ. कम्युनिटी मेंबर्स ने डिमांड किया है टू सी व्हाट एल्स इज इन अ प्रपोज्ड मर्जर बिटवीन वेकमेड एंड एट्रियम हेल्थ. अब ये जो पर्टिकुलर मर्जर है इसके बारे में बहुत बातें हो रही है, बिकॉज येस इट इज कैन बी अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल जो उनके अंडर आते हैं, जो बेसिकली उनके सर्विसेज अवेल करते हैं. सो येस्टरडे ड्यूरिंग टाउन हॉल इन राले, इट बिगेन अराउंड 6 PM एट सेंट एम्ब्रोज एपिस्कोपल चर्च इन राले. एंड द टाउन हॉल वॉज, येस इट वॉज टेस्टी एट टाइम्स बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर देयर एंड दे वर देयर टू वॉइस उनके कंसर्न्स ओवर द प्रपोजल कि ठीक है, अगर ये मर्जर हो जाता है तो हमारा क्या होगा. अब वॉट एग्जैक्टली द प्लान इज कि एट्रियम हेल्थ इज प्लानिंग टू मर्ज विद वेकमेड इन अ न्यू डील एंड इट कुड ब्रिंग एटलीस्ट $2 billion इन इन्वेस्टमेंट टू वेक काउंटी. उसके बाद लोगों ने कहा कि आर लाइव्स आर वर्थ मोर देन सम डील दे आर मेकिंग इन द बैक रूम, तो हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए. वेकमेड ने कहा कि एट्रियम की जो फाइनेंशियल बैकिंग उनको मिलने वाली है, इट विल हेल्प देम सर्व अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. बट अपोनेंट्स का कहना है दैट द प्लान कुड लीड टू हायर कॉस्ट्स एंड लोअर क्वालिटी ऑफ केयर. The meeting that was organized yesterday was organized by the Patients Union, which is a national group represented by local faith leaders. And unka aise kehna hai ki this is a personal fight, one that grows out of love for Wakemed. Ki theek hai, Wakemed ke andar jitne jitne log aate hain unko acha care bhi milna chahiye, kam paiso mein obviously kaam hona chahiye. But yeah, dekhte hain. Abhi kal logon ne apne jo concerns hai wo to unko bata diye hai. The deal would now require approval from the Wake County Board of Commissioners. They already have drawn considerable scrutiny and criticism from state officials since this deal was announced in May, and commissioners ne uske chalte ek initial vote ko delay kar diya tha. Ab kal ke is town hall ke baad we have to see where they exactly stand and where they exactly go from here, ki ye deal aage badhti hai ya nahi. Stay here, main hoon Shiv.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

CG welcome back aap ne tune in kiya hai Naira Rally Drum pe KDC pe local mahwayushian aap sun rahe hain zara muskurao well kal ka din was busy it was monday after all to yesterday ek aur cheez hui a group of key stakeholders at the University of North Carolina at Chapel Hill toured the site of what is said to be a major expansion project for the university. So, wahan pe dozens of faculty members the, bacche the, community members the, alumni the. They walked the old runway at Horace Williams Airport off Estes Drive and ye jo badi si 230 acre ki site hai, it is now said to be the future home of a new mixed-use campus. The UNC leaders are saying that it will create more space for students amid the rising enrollment and kaise kehna ki yes, this will help boost regional housing supply as well. अब स्पेसिफिक्स जो है कि एग्जैक्टली और क्या क्या बनने वाला है वहाँ पे वो तो रिलीज नहीं किया है बट यूएनसी ऑफिशियल्स ने कहा कि स्टूडेंट मल्टी फैमिली एंड वर्कफोर्स हाउसिंग आर अमंग द आइटम्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड ऑफिशियल्स ने कहा कि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर न्यू स्पेसेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ न्यू स्टूडेंट बेड्स प्लस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर फीट इन न्यू इंस्ट्रक्शनल एंड रिसर्च बिल्डिंग्स एंड उन्होंने उनके प्लान्स भी अनवील किए हैं टू इंक्रीज उनके अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट को बाय लिटरली 5,000 students over the next decade. So, अगर obviously 5,000 बच्चों के enrollment का उनका target है, तो उतनी जगह उनको उन बच्चों के लिए जमानी पड़ेगी, and that is where this particular site comes in. So, yeah, like in-state applications have already increased by 40%, and अब अगर अगले 10 साल में ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इतना बढ़ेगा तो दे आर मेकिंग श्योर दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी सो दे बेसिकली हैड अ साइट टूर यस्टरडे एंड अब देखते हैं कि इसका काम कैसे होता है क्या होता है एंड हमें क्या अपडेट्स मिलते हैं बट या दैट हैपेंड स्टे ट्यून्ड मैं हूं आयुषी आपके साथ

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: हेलो हेलो, यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट बॉलीवुड के गाने नायरा राली ड्रम पे। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आयुषेप के साथ, एंड फिलहाल आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं जरा मुस्कुराओ। Hamara state is now joining 24 other states, and they're going to be suing the Trump administration, alleging the federal government is unlawfully threatening to strip counterterrorism and emergency response ka funding from the state if it doesn't make certain changes to how it administers elections. So, President Trump, U.S. Secretary of Homeland Security are proposing to strip Homeland Security grant funding from aise sare states jinke election rules don't match Trump ke preferred policies, including some aimed at concerns over paper ballots, immigrants voting, and aur bhi bahut sari cheeze hain. So, hamari state and jo bhi baki ke states sue kar rahe hain, unka aisa kehna hai ki that's ek unconstitutional infringement on states' ke rights, and it also threatens public safety. So, this federal lawsuit was filed last week. It targets the Department of Homeland Security and the Federal Emergency Management Agency, that is FEMA, which falls under DHS. So, ab iske baad FEMA ke spokesperson ne in naye rules ko defend kiya ki nahi, we fully expect these left-wing politicians to oppose common sense measures designed to protect election security, and wo hamare saath cooperate karenge, aisa hum zarur hope karte hain. तो ऐसे में ऑब्वियसली सवाल आता है कि विथ दिस पर्टिकुलर लॉ सूट क्या हमारे जो भी फंडिंग है, हमारा जो रिस्पॉन्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंडिंग है, कुड वी लूज दैट? सो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन काउंटर टेररिज्म, नेचुरल डिजास्टर्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आर नाउ हैंगिंग इन द बैलेंस ऑफ दिस न्यू लीगल फाइट बिटवीन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड 24 स्टेट्स, एंड अब देखना है कि यहाँ से कहाँ जाता है। तो फीमा तो डिफेंड कर रहा है, एंड स्टेट्स आर नॉट हैप्पी विद दिस। सो रिगार्डलेस ऑफ द फाइट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द न्यू रिक्वायरमेंट्स, एक स्टेट बोर्ड ऑफ इलेक्शन स्पोक्समैन ने कहा कि हमारा स्टेट इज ऑलरेडी फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द रूल्स दैट ट्रंप वॉन्ट्स एंड कुड कम्प्लाई विद द रेस्ट, तो उनका काम हो जाएगा। तो अब देखना है कि वेर वी गो फ्रॉम दिस। स्टेडियम में हूँ आयुष के साथ।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

हेलो हेलो, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल। मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। हमारे स्टेट के लॉ मेकर्स अप्रूव नए रेगुलेशंस दिस मंथ एंड दे वर एम्ड एट रिड्यूसिंग यूथ एक्सेस टू सारे के सारे, ऑलमोस्ट नॉट सारे बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम प्रोडक्ट्स जो निकोटीन प्रोडक्ट्स है, क्रिएटिंग न्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेशलिटी वेप शॉप्स एंड एक्सपांडिंग उनकी स्टेट एनफोर्समेंट अथॉरिटी। बट इसके बावजूद पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स जो है उनका से कहना है दैट द लॉ डजंट डू इनफ टू कीप निकोटीन प्रोडक्ट्स आउट ऑफ बच्चों के हाथ। अब ये जो नए रूल्स अप्रूव हुए हैं, दे वर अप्रूव्ड एज पार्ट ऑफ द न्यू स्टेट बजट एंड दे रिक्वायर वेप शॉप्स टू ऑब्टेन $1,000 का स्टेट लाइसेंस टैक्स पर ईयर, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कस्टमर्स के एजेस बिफोर अलाउिंग एनीवन यंगर देन 21 इनसाइड, या फिर फेस टफर पेनल्टीज फॉर सेलिंग अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू nicotine or vaping in general. And the law also expands state enforcement authority to investigate violations and seize illegal products. And certain provisions of the law are going to be going into effect in October. Baki ke jo hai wo agle saal se they're going to go into effect. So bahut sare convenience stores, gas stations, grocery sales stores jo hai, they sell these nicotine products and vapes, but the new rules don't apply to them. So basically advocates ka kehna hai ki yahan pe to mil rahe hain, ये रूल्स तो उनको अप्लाई नहीं हो रहे हैं। सो बेसिकली पब्लिक हेल्थ एडवोकेट्स आर आस्किंग लॉ मेकर्स टू ब्रॉडन द रिस्ट्रिक्शंस टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ रिटेलर्स एज वेल, कि आप उसमें कन्वीनियंस स्टोर्स को भी इंक्लूड कीजिए, गैस स्टेशंस, ग्रोसरी स्टोर्स को भी इंक्लूड कीजिए, नहीं तो ये इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा बिकॉज किड्स विल स्टिल हैव एक्सेस थ्रू दीज पर्टिकुलर स्टोर्स। सो देखना है कि हमारी गवर्नमेंट क्या रिप्लाई करती है, बट या अब ये लॉ तो बन चुका है, kids are still exposed and we have to see do they strengthen the restrictions or not. Stay tuned, main hoon Aayush ke saath.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
3: Literally, it's a 35-year high and I have no words. I feel very sad about this. आपने ट्यून इन किया है नैरोली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। अब तो CDC ने भी अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज है, अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट दोज डिसीजेज। बट मुझे नहीं पता कि लोग कहाँ पे भटक रहे हैं। वाई आर पीपल नॉट गेटिंग देमसेल्व्स डेकेड्स वैक्सीनेटेड, ताकि ये जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है वो टोटली कम्प्लीटली चले जाए। आई मीन मीजल्स वॉज वन ऑफ देम, इट जस्ट केम बैक बिकॉज पीपल स्टॉप्ड वैक्सीनेटिंग देमसेल्व्स एंड देयर किड्स। एंड हमने पिछले साल उसका एक हिस्टोरिक रिसर्जेंस देखा। And now it is, you know, just half of the 2026 which is over, and the country has already recorded more cases than in any other year since 1991. Now the disease was declared eliminated. I am saying ki wo completely ja chuka tha in 2000, but pichle 18 mahino mein jo cases record kiye gaye hain, they have been so many that matlab पिछले 25 साल के कंबाइन करके भी अगर हम गिनेंगे तो उससे ज़्यादा केसेस सिर्फ पिछले 18 महीनों में रिकॉर्ड किए गए हैं। एंड डजन्स ऑफ न्यू केसेस आर रिपोर्टेड बाय द CDC ईच वीक विद न्यू लार्ज आउटब्रेक्स एडिंग टू अदर्स दैट हैव सिमर्ड सिंस लास्ट ईयर। सो यस, सारे जो लोग हैं स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं उनका ऐसे कहना है कि दिस इज अ पब्लिक हेल्थ फेलियर, इट इज टोटली कम्प्लीटली अवॉइडेबल एंड मोस्ट केसेज आर अमंग चिल्ड्रन एंड नियरली ऑल ऑफ द चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट मीजल्स। एक साधा सा वैक्सीन है MMR वैक्सीन, जाके ले लेना है, बच्चों को सेफ रखना है, बच्चे सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहेंगे। एंड ये जो डिसीज हमने 2000 में एलिमिनेट किया था उसको हम फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं बाय लिटरली गेटिंग एवरीवन वैक्सीनेटेड बिकॉज इट इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। इट्स जस्ट सैड कि 35 साल के बाद हम ये देख रहे हैं। माई गुडनेस, स्टेडियम में हूँ आयुषी के साथ।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: ग्लासगो में इंडिया क्या छा रही है, माय गुडनेस। आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका डीसी पका लोकल। मैं हूं आयुषी, आप फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं जरा मुस्कुराओ, एंड संडे से हम एंजॉय कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे इंडियन एथलीट्स का परफॉर्मेंस। सो मीराबाई चानू ने 48 केजी के कैटेगरी में गोल्ड जीत लिया। इट इज़ हर थर्ड कॉन्जिकटिव गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स एंड वी कुडन बी मोर प्राउड दैन इट्स, माई गुडनेस। मतलब जो कल एक वीडियो देखा है मैंने फ्रॉम द सेरेमनी ऑफ लाइक मेडल वाली जो सेरेमनी होती है, वो एक दिल भर के आ गया, मैंने खुशी के आंसू निकल आए सीरियसली। एंड उसमें उसके बाद हमें पता चला है कि इंडिया का जो वेट लिफ्टिंग कंटिजेंट है, इट एडेड अनादर मेडल ऑन संडे एज बिंदिया रानी देवी क्लिंच्ड हर ब्रॉन्ज इन द वुमेन्स 58 केजी फाइनल। सो इट इज नाउ इंडिया का फिफ्थ वेट लिफ्टिंग मेडल। पहले मीराबाई चानू वन गोल्ड इन 48 केजी, उसके बाद ऋषिकांता सिंह इन मेन्स 60 केजी ही वन सिल्वर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। मुथुपंडी राजा वन सिल्वर इन मेन्स 65 केजी अगेन, and Gyaneshwari Yadav won silver in women's 53 kg, and overall literally sabhi jo contingent ke players hai they finished on the podium in their respective categories, and I mean kya hi ek streak chal raha hai, touch wood. So I'm super happy, I'm super excited ki hamare sare jo Indian athletes hai wo filhal ke Commonwealth Games mein ekdam hi badhiya khel dikha rahe hai. It is the fifth gold medal in weightlifting for India, and overall agar hum Commonwealth Games ka medal dekhe to abhi tak humne 6 total medals jeet liye hai, and abhi is Commonwealth Games chal rahe hain to hamare sare players ko athletes ko support karte rahiye, badhiya badhiya khabrein hame pata chal rahi hai, to all the very best to all the athletes and congratulations, a big congratulations to them, my goodness. Stay tuned, Mahawaiya.
1: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.

I mean, yes, we have lot of updates. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल मैं वायुषी आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं हुआ है. There's just a छोटा सा पॉज इन फाइटिंग बिटवीन द यूएस एंड ईरान एंड उस पॉज के चलते ऑयल प्राइसेस फेल वेरी शार्पली एंड इट वॉज लिटरली द बिगेस्ट डिक्लाइन सिंस अर्ली अप्रैल. ब्रेंट फ्यूचर्स जो है विच इज द ग्लोबल बेंच मार्क क्लोज डाउन 11.3% एंड यूएस क्रूड जो है इट ड्रॉप्ड अबाउट 7%. अब ये जो हॉस्टिलिटीज में पॉज आ रहा है इट वॉज बेसिकली ऑन मंडे. इट वॉज एट द रेजिम्स रिक्वेस्ट वार्निंग दैट दे वुड रिज्यूम इफ अ न्यू सीज फायर डील इज नॉट रीच्ड. तो बेसिकली उन्होंने फिर से एक बार उनका कॉन्फ्लिक्ट पॉज कर दिया है टू गिव ईच अदर टाइम कि नहीं नहीं आप एक सीज फायर डील लेके आइए, नहीं नहीं आप एक सीज फायर डील लेके आइए, नहीं आप पहले आप करते करते फिर से वो उन्होंने पॉज कर दिया है. सो ईरान की जो फॉरन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा दैट देर आर नो करंट नेगोसिएशंस विद the US. Meanwhile, Israeli and Lebanese officials are going to be meeting in Rome agle hafte to continue unka work on implementing a US brokered agreement which is aimed at a peace deal between the two countries. And the main khabar for today is that Trump is going to be meeting separately with Ukrainian President Zelensky and uske baad Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu aaj for talks expected to focus on the conflicts both in Ukraine and the Middle East. Dono alag alag meetings hongi, saath mein nahi hongi. But yeah, aaj ye do badi meetings hone wali hai White House mein and uske updates hame aaj milenge. Kal hum uske bare mein baith ke baat karenge. But yeah, we are kind of, you know, just waiting in anticipation ki ye log baith ke kya baat karte hai. Kuch fruitful baat kare to hum manenge. Yeah. Stay tuned, main hu Aisha ke saath.

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
1: हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. तो यस्टरडे ऑयल प्राइसेस टंबल्ड 8%. इट वाज ऑन पेस फॉर क्रूड्स बिगेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन सिंस मई 25 एंड इट वाज बिकॉज देयर वाज वंस अगेन अ पॉज इन फाइटिंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज एंड उसके चलते ऑयल ट्रेडर्स को एक थोड़ा सा होप मिल गया कि चलो फाइनली वी माइट कम टू अ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन. इट कुड स्टार्ट द फ्लो ऑफ ऑयल ट्रैफिक आउट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड सारी चीजें माइट कम बैक टू नॉर्मल. सो द न्यूज दैट ऑयल मार्केट्स आर ट्रेडिंग ऑन इज वेरी थिन एट बेस्ट बिकॉज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज पॉज्ड प्लान्स to escalate the war, ऐसा हमें पता चला है. And a lack of fighting this weekend suggested that maybe the two countries could return to negotiating table. अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है. ऑल दो आज दो जो मीटिंग्स होंगी उसमें कुछ अगर पता चलता है तो हमें पता चलेगा. बट दिस वॉर हैज जस्ट वाइडन्ड एंड इट हैज नो इजी सोल्यूशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स लैक्स अ क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी. ईरान जो है इट रिमेन्स इंसेंटिवाइज्ड टू एक्सरसाइज मैक्सिमम कंट्रोल कि वहां से ऑयल कितना निकलता है कितना नहीं. एंड ट्रैफिक थ्रू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रिमेन्स इफेक्टिवली हॉल्टेड. तो वी आर स्टिल जस्ट लाइक स्टक इन अ लिम्बो कि हाँ ठीक है एक दिन के लिए ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो गए पर पता नहीं कल ज्यादा भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है. यू जस्ट नेवर नो. सो या ऑयल मार्केट्स कंटिन्यू टू हैव अ काइंड ऑफ पीस बाइज बट दे आर स्टिल वेरी अनप्रेडिक्टेबल. दे आर लाइक कि प्राइसेस आर सिंकिंग ऑन एनी साइन ऑफ पॉजिटिव न्यूज. इट हैपेंड इन मिड अप्रैल जब एक सीज फायर वॉज अनाउंस्ड एंड अब ये फिर से हो गया. कल वो फिर से बढ़ सकता है बिकॉज वॉर एस्केलेट हो गया. सो हियर वी आर एंड इट माइट जस्ट यू नो कंटिन्यू एंड इट इज जस्ट लाइक दिस एज ऑफ नाउ. देखते हैं क्या होता है. स्टे ट्यून्ड. मैं हूं आयुषी आपके साथ.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स जो है, दे हैव सेंट मिक्स्ड सिग्नल्स ऑन द पाथ ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज इन्फ्लेशन के कंसर्न्स जो है, दे हैव इंटेंसिफाइड एंड इट हैज फ्यूल्ड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटलुक फॉर द इकोनॉमी इन जनरल. पॉलिसी मेकर्स विल हैव अ चांस टू क्लैरिफाई उनका थिंकिंग दिस वीक व्हेन दे आर गोना बी कन्वीनिंग फॉर द लेटेस्ट रेट सेटिंग मीटिंग एंड दैट वन इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. अब जून में हमने देखा दैट इन्फ्लेशन स्लोड डाउन शार्पली एंड इट वॉज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इट वॉज लार्जली बिकॉज कि हमने देखा उस महीने में एनर्जी प्राइसेस जो है वो लो हो गए थे. द टेंशंस ब्रीफली ईज्ड इन द वॉर विद ईरान एंड जो एनकरेजिंग इन्फ्लेशन रिपोर्ट हमें मिला, इट बेसिकली प्रॉम्प्टेड सारे इन्वेस्टर्स टू स्केल बैक एक्सपेक्टेशंस दैट द फेड वुड नीड टू रेज इंटरेस्ट रेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जुलाई 2023 एंड इट शुड बी इन ऑर्डर टू प्रेस प्राइस प्रेशर्स इन चेक. बट अब हमने देखा कि पिछले कुछ वीक्स में फिर से एक बार मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया है. इट हैज ट्रिगर्ड अ स्पाइक इन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस. एक दिन के लिए वो कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं उसका परमानेंट रिलीफ मिलने वाला है या नहीं. बट या फेड्स आर नाउ डिबेटिंग हाउ द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री कुड इम्पैक्ट इन्फ्लेशन. अब उनके सामने इस मीटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस रहने वाले हैं. दे गोना बी कन्फ्रंटिंग एक अनयूजुअली कन्फ्यूजिंग इकोनॉमिक मोमेंट बिकॉज जो इकोनॉमिक क्रॉस करंट्स है, दे हैव मेड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली द इन्फ्लेशन इज हेडेड. एंड अगर नहीं पता है तो कंपाउंडिंग दैट अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट्स किस दिशा में जाएंगे. एंड हेड ऑफ दिस वीक्स पॉलिसी मीटिंग, मार्केट्स आर स्प्लिट ऑन वेदर द फेड विल होल्ड इट्स बेंचमार्क लेंडिंग रेट स्टेडी फॉर द फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव टाइम या फिर दे आर गोना बी डिलीवरिंग अ रेट हाइक, वी डू नॉट नो. उस मीटिंग के बारे में पता चलेगा. बट देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू दैट मीटिंग एज वेल एंड हियर वी आर एज ऑफ नाउ. या स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

आज का ये ओकेजन तो मतलब रोज रोज हमने सेलिब्रेट करना चाहिए. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम, पका देसी पका लोकल. मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आज है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे. आई मीन अब हमें और कितने क्लियर कट साइंस चाहिए कि हमें हमारे धरती माता की रक्षा करनी है अच्छे से, इन द सेंस कि पेड़ नहीं काटनी है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो रियल है तो उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देना है, ऐसी पॉलिसीज लानी है जिससे कि हम ये सारी चीज़ें कंट्रोल में ला सके, ताकि हमारी जो एक ओवरऑल मदर अर्थ है वो सेफ रहे, हेल्दी रहे, एंड वो हमें भी हेल्दी रखे. आज का ये दिन हमें एक्चुअली रोज़ सेलिब्रेट करना चाहिए. रोज़ मतलब कितना ही मैं चिल्ला के बोलूँ या फिर कितना ही एक्टिविस्ट्स एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट्स चिल्ला के कहे कि भैया इसकी ज़रूरत है, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है. वी हैव क्लाइमेट रेफ्यूजीज नाउ, एंड इफ वी डोंट एक्चुअली स्पेंड टाइम ऑन कंजर्वेशन एफर्ट्स इट माइट बी जस्ट टू लेट एंड इरिवर्सिबल डैमेजेस हो सकते हैं जो हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं वैसे देखा जाए तो. बट या आज का ये दिन दैट इज वाइट इज वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके साथ साथ आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है कि येस वैक्सीन ले लीजिए, बच्चों को दिला दीजिए ताकि वो सेफ रहे. नेशनल सॉकर डे है, नेशनल मिल्क चॉकलेट डे है, आज वर्ल्ड ओवरऑल कंजर्वेशन डे तो है ही, आज लव पार्क्स वीक भी चल रहा है एंड इट इज कैन गो ऑन टिल संडे ऑगस्ट 2nd. तो इट इज जस्ट अबाउट सेलिब्रेटिंग पार्क्स इन जनरल बिकॉज दे आर लाइक अ गुड पब्लिक स्पेस जहाँ पे हम मिलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खेलते हैं. सो ये सारे ओकेजन्स हैं, सेलिब्रेट दम अकॉर्डिंगली एंड या क्रिएट अवेयरनेस अकॉर्डिंगली. एंड सुनते रहिए नायरा राली ड्रम मेरे एनकेएफजी के साथ. स्टे

lot of events happening this weekend again. Aaj ne tune in kiya hai Naira Rally Drum pe kadisi pe kalo kul main wahi shin aap sun rahe hain zara muskurao. अभी पिछले वीकेंड यानी कि अभी संडे को रैली रेस्टोरेंट वीक ख़त्म हो गया. लोगों ने बढ़िया तरीके से उसे इन्जॉय किया एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीक दिस कमिंग वीकेंड एज वेल एंड फूड रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होने वाली है इस वीकेंड. एक तो ऑन ऑगस्ट 1st वी हैव बियर बर्बन एंड बारबेक्यू फेस्टिवल एट कोका बूथ एम्फी थिएटर इन कैरी. देन ऑन ऑगस्ट 1st इटसेल्फ वी हैव वाटरमेलन फेस्टिवल. इट इज़ गोइंग टू बी अ वाटरमेलन ईटिंग कॉन्टेस्ट वहाँ पे एट मैक्लीन फार्म्स इन फॉकवेवरीना. एंड उसके बाद वी हैव ड्रम फिएस्टा लटीना. इट इज़ अ फन एक्टिविटी एंड इवेंट फॉर द एंटायर फैमिली. आप आपके बच्चों को भी लेके जा सकते हैं. एंड देन वी हैव बबल फेस्ट हैपनिंग ऑन ऑगस्ट 2nd from 11 a.m. to 4 p.m. in Moor Square. Then there's the market at NCMA. You can just browse the galleries, enjoy the museum park, you can shop local. We have girls' summer soiree as well. So yahan pe sare local female-owned small businesses are going to be there at Boxyard RTP. Wahan pe

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

माई गुडनेस, दिस इज़ एक अलग चैलेंज. आपने ट्यून किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल में. वायुशियन आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. मार्स एक वेरी वेल नोन डस्टी प्लानट है एंड हमने मार्शियन इस मूवी में भी देखा है कि कैसे वहाँ पे यू नो डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं. अब कुछ लोगों का ऐसे कहना है, कुछ इन द सेंस कि जो एक्सपर्ट्स उनका ऐसे कहना है कि मार्स का जो थिन एटमोसफियर है इट कुडंट एक्चुअली प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ फोर्स, बट ओवरऑल जो डस्ट वहाँ पे है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द बिगेस्ट हैजर्ड्स फॉर एस्ट्रोनॉट्स. जिसके चलते अब नासा जो है दे कैन बी एस्टेब्लिशिंग उनके फर्स्ट रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट्स फॉर एयरबोर्न मार्शियन डस्ट बिकॉज द एजेंसी इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर ह्यूमन मिशंस टू द रेड प्लैनेट. सो मार्स पे जाने के जो हमारे सपने हैं कि अरे एक दिन हम मार्स पे जाएंगे, वो जल्द ही एक्चुअली रियलिटी बन सकते हैं. एंड उसके लिए ऑब्वियसली हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे. तो उसमें ये भी आता है, नाउ द न्यू रिकमेंडेशन सेट्स कंटिन्यूस एक्सपोजर लिमिट्स 4 times लोअर देन लूनर डस्ट एंड दिस कंजर्वेटिव थ्रेशहोल्ड रिफ्लेक्ट्स नॉट जस्ट द डेंजर्स but also what researchers still don't know ki how prolonged exposure to Martian dust could affect the human body. Hame nahi pata, iske pehle hum nahi gaye na isliye pata hi nahi hai. So these concerns are now rhetorical. Apollo astronauts discovered ki lunar dust behave nothing like ordinary dust. Jo unke fine particles hote hai, they clung to space suits, they worked their way into the lunar module, they irritated astronauts ki eyes and airways after moonwalks and they are like ki ye to lunar dust ka ho gaya, ab Martian dust ka hame nahi pata. तो दे आर सेटिंग देयर न्यू स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस कि अरे भैया अभी मार्स पे जाना है तो हमें देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं क्या नहीं. सो दीज एक्सपोजर लिमिट्स बेसिकली सेट अप इंजीनियर्स टू डेवलप बेटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स, डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल्स, कंटामिनेशन कंट्रोल्स, हैबिटेट डिजाइंस दैट कीप एज मच ऑफ द मार्शियन एनवायरमेंट एज पॉसिबल आउटसाइड, ताकि वो अकॉर्डिंगली काम कर सकें. एंड जब वहाँ पे एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे तो वो रेडी रहेंगे टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट दे विल फेस वहाँ पे. बट या इसमें कि अलग प्रकार का प्रॉब्लम है, हमने सोचा भी नहीं था, बट वो सोच के उसके ऊपर काम कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ आयुषी आपके साथ.

0: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
1: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
2: Dosa Bundi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3883.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 14.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

यार जब भी मैं ब्रेकअप्स या फिर डिवोर्सेस की बातें सुनती हूँ ना, मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आता है कि जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए तो फिर कभी ना जाए रब्बा। इट्स सो सैड मैन। दिस इज़ बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो अमिड ऑन गोइंग स्पेकुलेशन सराउंडिंग हर मैरिज टू रैपर बादशाह, पंजाबी एक्टर रिशा रिकी हैज शेयर्ड एन इमोशनल नोट अबाउट चूजिंग करेज ओवर फियर आफ्टर इयर्स ऑफ साइलेंस विदाउट एड्रेसिंग द रूमर्स डायरेक्टली टू रिवीलिंग स्पेसिफिक डिटेल। द एक्टर स्पोक अबाउट लिविंग इन फियर, स्टेइंग साइलेंट एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड फाइनली फाइंडिंग द स्ट्रेंथ टू स्पीक अप। इन अ हार्टफेल्ट स्टेटमेंट शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, रिकी रिफ्लेक्टेड ऑन द इमोशनल बैटल्स एज शी हैज एंड्योर्ड, राइटिंग देयर आर बैटल्स दैट scars for a long time. I remained silent because I was afraid. I felt overwhelmed by the influence, power and resources I believed my husband had, and I convinced myself that staying quiet was the safest thing to do. What does it mean, man? It is so dark. I hope they are fine, you know. Stay tuned for more. I'll be back.

देखती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: With 13 plus certificate after CBFC directed a few changes, including the removal of a kissing scene. Maybe two kissing scenes. तो इंडिया की ही बात है, फॉरेन में तो लोग देख पाएंगे वो प्यारा सा किसिंग सीन, बट इंडिया वाले नहीं देख पाएंगे. ओके, इज इट सैड और नॉट? बाय द वे, हम स्पाइडरमैन के तो बड़े फैन हैं, उनके लिए तो कुछ भी देखा जा सकता है. बिना किसी सीन के भी वी विल एंजॉय द फिल्म. नाउ एंजॉय यू ऑल द अपकमिंग सॉन्ग्स ओनली ऑन नायरा.
1: हेल्दी लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

Shilpa Shetty denies viral reservation statement, says it's completely fabricated. Let's know what's that matter. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, a post falsely attributed to Shilpa Shetty on reservation went viral online. The actor has now reacted, calling it completely fabricated, malicious garbage, and urged people not to fall for fake news. ये कल मैंने आपको बताया था कि ये और भी दूसरे एक्टर्स के साथ हो रहा है कि मतलब उनके नाम पे पीपल आर मेकिंग स्टेटमेंट्स. कितना ज्यादा स्केरी है यार. और ये स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, वो रिजर्वेशन को लेके कर रहे हैं, व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू बॉलीवुड फेसेस एंड ऑल. क्या चल रहा है? पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेकिंग थिंग्स एंड मेकिंग रूमर्स, यू नो, नाउडेज दे आर नॉट. वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक ओनली ऑन नाइट.

Wow, that's a very sweet special request, you know. This is Bollywood Biz with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Pawan Kalyan's wife, Anna Lazareva, has requested fans to call her Anna Konidala. Sharing a heartfelt note on Instagram, she said her name is deeply personal and reflected on its significance. बढ़िया अच्छा सा उन्होंने पोस्ट लिखा हुआ है एंड दैट स्टार्टेड विद अ नेम इज सच अ पर्सनल थिंग और उसके बाद में पूरा उन्होंने वो रिक्वेस्ट जाहिर किया है अपने मन की बात. आई होप कि उनके फैंस अब उन्हें उसी नाम से बुलाएं जिस नाम से वो चाहती हैं. Well, stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का।

यार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको आपके बर्थडे का एक्साइटमेंट आपसे ज्यादा होता है. दे आर ऑलवेज रेडी टू सेलिब्रेट योर बर्थडे लाइक इट्स अ फेस्टिवल, यू नो. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड सलमान खान हैज शेयर्ड अ वार्म हग विद डायरेक्टर वाश्मी पड्डीपली एज द टीम सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे. द अनसीन पिक्चर हैज गोन वायरल, रेजिंग एक्साइटमेंट फॉर देयर अपकमिंग फिल्म स्टारिंग सलमान खान एंड नयनतारा. बाय द वे, जोड़ी हमें पहली बार स्क्रीन में दिखने वाली है एंड इट इज सो एक्साइटिंग टू वॉच देम टुगेदर. एंड बर्थडे वाली बात है तो हम भी यार डायरेक्टर साहब को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं. फिलहाल आप सुनिए आने वाले खूबसूरत गाने ओनली ऑन नायरा.

FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: Hello, hello, hello, people. Pranam, namaste, adab, shashrakal, game cho, and a very, very warm hello to each and every one of you. Okay, main Prachi. आप सुन रहे हैं सनसरा रेडियो 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम और 1490 एएम पर. वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ, स्ट्रेस को थोड़ा हटाओ, क्योंकि अगले कुछ पल होंगे फुल ऑन टाइट अगेन. आज का शो थोड़ा अलग है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा पर्सनल और शायद थोड़ा लाइफ चेंजिंग भी. आज हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं ना किसी सेलिब्रिटी की, ना किसी रिलेशनशिप की, ना किसी सक्सेस स्टोरी की. आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो हर सुबह आपके साथ उठता है, हर रात आपके साथ सोता है, हर खुशी, हर दर्द, हर स्ट्रगल, हर जीत, हर हार, सब कुछ जिसने आपके साथ जिया है और फिर भी सबसे ज्यादा इग्नोर हुआ है. वो इंसान आप खुद हैं. हाँ, आप खुद. एंड ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस टुडे बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माई ओन हार्ट. वी स्पेंड सो मच टाइम टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन अराउंड अस, but we forget that we also deserve that same care, that same patience, that same kindness, right? आज का शो है खुद से प्यार, सबसे मतलब खुद से एकदम प्यारा, सबसे खूबसूरत रिश्ता खुद से प्यार. लेकिन पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्पा जाना नहीं होता, शॉपिंग कर लेना नहीं होता, मिरर के सामने खड़े होकर आई एम ब्यूटिफुल बोल देना भी नहीं होता. सेल्फ लव एक फीलिंग है, एक डिसीजन है, एक प्रैक्टिस है और सबसे बढ़कर एक रिलेशनशिप है, जो अगर स्ट्रांग हो जाए तो जिंदगी के आधे प्रॉब्लम्स वैसे ही हल्के लगने लगते हैं. तो चाय रेडी कर लो, सेटल इन और चलो शुरू करते हैं आज का सफर. वंस अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनसरा ऑन रेडियो 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम एंड 1490 एएम. आई एम प्राची एंड टुडेस शो इज पर्सनल. इट्स अबाउट द वन रिलेशनशिप वी ऑफन नेगलेक्ट द मोस्ट, the one with ourselves, self-love. Let's explore it together for two beautiful hours. ये गाने सुन लो, वापस आती हूँ सुनजरा रेडियो नाइट पे.

0: Welcome back to Sansara Radio 99.9 FM, HD4 101.9 FM and 1490 AM. मैं हूँ प्राची. एक सवाल, कभी किसी को टेक केयर बोल देते हैं, ड्राइव सेफ है ना, खाना टाइम से खा लेना, रेस्ट कर लेना, स्ट्रेस मत लेना, ध्यान रखना, लेकिन हम कब खुद से कहते हैं ये सारी चीजें? जैसे कि प्राची, मैं खुद को अपने आप को प्राची, तू भी थक गई होगी, आज थोड़ा रेस्ट कर ले, और हे इट्स ओके, यू डिड योर बेस्ट टुडे. वी से दिस थिंग्स टू एवरीवन वी लव, राइट, बट नेवर टू आवरसेल्व्स. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. एक लड़की थी अनन्या, बचपन में डांस करती थी, स्कूल के एनुअल फंक्शन का स्टार, पेंटिंग करती थी, डायरी लिखती थी, सबको हंसाती थी, सब कहते थे कितना जिंदा दिल बच्ची है यार. फिर लाइफ बदल गई, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्स, डेडलाइंस, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, स्कूल पिकअप्स और ढेर ढेर सारे काम, और धीरे धीरे उसने डांस करना छोड़ दिया, डायरी लिखना छोड़ दिया, खुद को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया. एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मा आपको क्या करना पसंद है? और वो चुप हो गई, उसे याद ही नहीं था. कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हम अपनी पहचान इतनी धीरे धीरे खो देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता. शायद ये कहानी सिर्फ अनन्या की नहीं, हम सब की है. एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव लर्न पर्सनली, सेल्फ लव मीन्स नोइंग योर वर्थ विदाउट नीडिंग समवन एल्स टू कन्फर्म इट. जब हम दूसरों की रिप्लाइज का वेट करते हैं, उनका अटेंशन ढूंढते हैं, उनके रिएक्शन से अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं, हम उन्हें पावर दे देते हैं ये डिफाइन करने की कि हम कितने वैल्यूएबल हैं. सेल्फ लव का मतलब है खुद से कहना आई एम इनफ रिगार्डलेस. अगर पूरी दुनिया एक दिन के लिए साइलेंट हो जाए, ना कोई लाइक्स, ना कोई कॉम्प्लीमेंट्स, ना कोई अप्रिशिएशन, तब भी क्या आप खुद को पसंद करेंगे? यही सेल्फ लव का असली टेस्ट है. आज एक और क्वेश्चन है ना, सवाल ये था, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए. अगर दुनिया के सारे लेबल्स हटा दिए जाए, है ना, ना मम्मी, ना पापा, ना वाइफ, ना हस्बैंड, ना फ्रेंड, ना एम्प्लॉय, तो आप कौन हैं? खुद से मोहब्बत करना सीखो, ये दुनिया की रीत है. जो खुद से प्यार करे उसकी हर राह सुंदर और मीठी है ना. So friends, self-love is not selfish. It is the foundation of everything. You cannot pour from an empty cup. Fill yourself first, then you can truly show up for everyone else. ये गाने सुन लो, वापस आती हूँ सुनसरा पर.
1: And this goes out for all the beautiful ladies in this world who got a dream. A dream to fly high. But nobody gonna stop you. Nobody gonna tell you what to do and what to not. And this goes out for you, baby. Ain't nobody gonna stop you.

0: best of life. Sundar here, Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
1: Mike here at Auto Park Honda and Carry, where we keep it simple. You get the Honda you want at a price you'll love, all with no games and no gimmicks. Get real value with every new Honda purchase, like no-cost oil changes, loaner cars, and free towing. It's how we've saved our customers thousands for over a decade. So forget the games and drive happy with a team that puts your needs first. Auto Park Honda and Carry and AutoParkHonda.com. It's easier here.
2: Visit AutoParkHonda.com for details.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए.
0: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

Welcome back to Sanzara Radio, 99.9 FM, HD4, 101.9 FM, or 49 AM. I hope Prachi. A confusion, bahut common hai. Self-love or selfishness, dono same hai kya? Nahi. Research batati hai ki जो लोग खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट, वो दूसरों को भी ज्यादा एम्पथी के साथ ट्रीट करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्यार की कमी नहीं होती. सोचिए, एक मोबाइल फोन अगर बैटरी सिर्फ 2% हो तो वो कितनी देर दूसरों का कॉल, मतलब दूसरों को कॉल कर पाएगा? नॉट लॉन्ग, है ना? वैसे ही हमारी इमोशनल बैटरी भी रिचार्ज होना जरूरी है. हम सबके पास एक इनविजिबल इमोशनल बैंक अकाउंट होता है. हर क्रिटिसिज्म विथड्रॉवल, हर कंपैरिजन पे विथड्रॉवल, हर गिल्ट पे विथड्रॉवल, हर सेल्फ डाउट पे विथड्रॉवल. लेकिन डिपॉजिट कब करते हैं हम? कभी खुद को थैंक यू बोलते हैं क्या? कभी कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू? नहीं, हम वेट करते हैं कि कोई और कहे. बॉस कहे, पेरेंट्स कहे, पार्टनर कहे, फ्रेंड्स कहे, सोशल मीडिया कहे. मेरी एक दोस्त है, हर किसी का बर्थडे याद, हर किसी की हेल्प, हर किसी को सरप्राइज, हर किसी के लिए अवेलेबल. लेकिन जब उसका बर्थडे आता है तो, और सिर्फ दो लोगों ने विश किया, तो वो पूरा दिन रोती रही. बहुत कम लोगों ने, आई मीन, प्रॉब्लम विशेस की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसकी हैप्पीनेस का रिमोट दूसरों के हाथ में था. एंड दोस्तों, जिस दिन हम अपनी खुशी का रिमोट खुद के हाथ में ले लेते हैं ना, उस दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 414 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

வெல்கம் பேக் டு சின்சரா ரேடியோ 99.9 எஃப்எம் எஸ்டி 411.1 எஃப்எம் ஆஃப் 490 AM. सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मिरर. और उस मिरर में सबसे पहले सेंटेंस क्या बोलते हैं देखें. ओ गॉड, कितनी टायर्ड लग रही हूँ यार, वेट कितना बढ़ गया, ये रिंकल्स कब आ गए, कभी नोटिस किया? मिरर सिर्फ चेहरा दिखाता है लेकिन हम उसमें अपनी पूरी वर्थ देखने लगते हैं. एंड सोशल मीडिया हैज मेड दिस सो मच वर्स. एक स्वाइप परफेक्ट स्किन, दूसरा स्वाइप परफेक्ट बॉडी, तीसरा स्वाइप परफेक्ट वेकेशन. और धीरे धीरे हमें लगने लगता है सिर्फ मेरी लाइफ ही इम्परफेक्ट है. लेकिन सच क्या है? रिसर्च बताती है कि हम सोशल मीडिया पर लोगों की हाईलाइट रील देखते हैं और उसकी कंपैरिजन अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से करते हैं ना. ये कंपैरिजन कभी फेयर हो ही नहीं सकता. एक फैमिली फंक्शन था, सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे. ओके, एक आंटी बार बार फोटो डिलीट करवा रही थी, ये एंगल अच्छा नहीं है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लो, फेस मोटा लग रहा है, हाइट छोटी लग रही है. उनकी छोटी सी ग्रैंड डॉटर चुपचाप देख रही थी. थोड़ी देर बाद उसने पूछा, नानी क्या आपको अपना फेस पसंद नहीं है? ना आंटी मुस्कुरा तो दी पर उस रात वो बहुत रोई. उन्हें एहसास हुआ जो बातें वो खुद से करती हैं वही बातें उनकी पोती भी एक दिन खुद से करेगी. हम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जीते, हम अगले जनरेशन को भी सिखा रहे होते हैं कि खुद से कैसे बात करनी है. और दोस्तों रिसर्च ये भी कहती है कि एक एवरेज इंसान रोज लगभग 60,000 थॉट्स सोचता है और उसमें से बहुत सारे थॉट्स खुद के अगेंस्ट होते हैं. वी आर राइट, सो स्टूपिड, आई एम नॉट इनफ, मैं अच्छी नहीं हूं. सोचिए अगर कोई और इंसान आपसे इस तरह बात करे तो क्या आप उसके साथ फ्रेंडशिप रखोगे जो आप ही को बुरा बोले? नहीं ना. फिर हम खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज घर जाकर मिरर के सामने खड़े होना और अपने फ्लॉस मत देखना, बस एक मिनट आंखों में देखना और कहना थैंक यू, थैंक यू मेरे पैर जो मुझे हर जगह ले गए, थैंक यू मेरे हाथ जो हर रोज मेरे अपनों के लिए काम करते हैं, थैंक यू मेरा दिल जो इतना कुछ सह कर भी धड़कता रहा. और मीन करना, शायद पहली बार मिरर में चेहरा नहीं एक कहानी नजर आएगी आपको खुद की. आईने को छोड़ो, दिल से खुद को देख जरा, वो जो अंदर से चमके वही है सच्चा सितारा. वी आर आवर ओन हार्डेस्ट एकदम क्रिटिक्स, बट व्हाट इफ वी टर्न दैट इनर वॉइस इनटू आवर द बिगेस्ट सपोर्टर? व्हाट इफ वी स्पोक टू आवरसेल्व्स विद द सेम काइंडनेस वी गिव टू दोज वी लव? That shift changes everything, है ना? ये गाना सुनो, वापस आती हूँ सुनजरा पर.

Welcome back to Sunset Hour Radio 90.99.9 FM at Shippo 101.9 FM Hour 1490 AM. मैं हूँ प्राची. एक सवाल पूछो. कभी किसी की सक्सेस देखकर दिल से खुशी हुई और उसके तुरंत बाद अंदर से एक आवाज आई, मैं इतना पीछे क्यों हूं? ये फीलिंग ऑलमोस्ट सबको आती है. कंपैरिजन ह्यूमन नेचर है, लेकिन कंटिन्यूस कंपैरिजन हैप्पीनेस का सबसे बड़ा थीफ है, चोर है. दो दोस्त थे, है ना, निशा और मीरा, कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड्स. निशा टीचर बनी, मीरा बड़ी बिजनेस वुमन. एक दिन निशा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मीरा फॉरेन ट्रिप पर थी, लग्जरी होटल्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स. निशा ने फोन बंद किया और सोचा, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है. उसी वक्त मीरा अपनी होटल रूम में बैठी थी और निशा की फैमिली पिक की पिकनिक की जो फोटो है देखकर रो रही थी. उसने हस्बैंड से कहा, काश मेरे पास भी इतना फैमिली टाइम होता. सो दोनों को लग रहा था दूसरी की लाइफ बेटर है. हम अक्सर अपनी खामियां कमियां दूसरों की हाईलाइट से कंपेयर करते हैं. एंड हियर्स व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर टुडे इज, हर इंसान का टाइमलाइन अलग होता है. कोई 22 में सक्सेसफुल होता है, कोई 42 में, कोई पहली जॉब में खुश होता है, कोई करियर ब्रेक के बाद अपनी पहचान बना के, कोई रिटायरमेंट के बाद पेंटिंग शुरू करते हैं. तब लाइफ रेस नहीं है, ये जर्नी है. हम समझ ही नहीं पाते. ट्री लगाने का बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, सेकंड बेस्ट टाइम आज है. और एक और बात जो मुझे पर्सनली बहुत जरूरी लगती है, साइलेंस इज ऑल्सो एन आंसर. कभी कभी लोग जो आपको वर्ड से नहीं, अपनी एब्सेंस से दिखाते हैं ना कि वो कौन है. सेल्फ लव का मतलब है उस आंसर को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना, इंस्टेड ऑफ चेजिंग एक्सप्लेनेशंस. वॉकिंग अवे इज नॉट अ वीकनेस. द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव इज चूजिंग योर ओन पीस ओवर कनेक्शन दैट इज ड्रेनिंग यू, है ना. Walking away is not a weakness. The hardest form of self-love is choosing your own peace over a connection that is draining you. That takes more courage than staying. अपनी राह खुद बनाना सीख, किसी और की देखकर मत चल. हर इंसान की अपनी कहानी है, अपना वक्त और अपना पल. So stop comparing your chapter 2 to someone else's chapter 10. Your journey is uniquely yours. And the silence from someone is also their answer. Accept it with the grace and keep moving forward. Ye gaane suno. Wapas aati hoon Sunset Hour. The sweet song.

0: Welcome back to Sansara Radio, Nairobi 99.9 FM, STPO 101.9 FM और 4090 AM. मैं हूँ प्राची. वैसे मैं बताना भूल गई, अगर आपको कुछ कहना है या बात करनी है, कुछ बताना है इसके बारे में, सेल्फ लव पे, तो प्लीज टू कॉल मी ऑन 9199998595 पर. और हाँ, मैं एक बात बता रही थी, एक इंसान, रिपीट, यू गॉट अ कॉल, ऑसम. हेलो,
1: हेलो,
0: हाय,
1: हाय प्राची,
0: हाय, हाउ आर यू?
1: I'm doing good. I'm doing great. And yeah, I'm listening to you, your songs, and that have made them my day great.
0: Amazing. So what's your name?
1: Actually, my name is Unnati. I'm calling from Raleigh area.
0: Hi, Unnati. Nice to meet you. Someone talking from Raleigh.
1: Yeah. Thank you. And yeah, your voice is very sweet.
0: Thank you. I really appreciate that.
1: Yeah, I loved your today's topic, and yeah, I like to talk something on that.
0: Sure, definitely.
1: Like adding on your points. So yeah, it's really. It may be a harsh truth that as a female we keep on comparing each other, which should not happen. We should always admire every person has different qualities which should be admired.
0: Absolutely.
1: Like someone may be good at dancing, someone may be good at singing. So that's their traits. See, they are doing well, they are enjoying their life, and they should enjoy. Comparison hurts you, which should not happen. Not yourself should do that, and we should not let others do that as well.
0: Absolutely. You should never encourage this kind of behavior, right? As in woman to woman, at least.
1: Exactly. And I also observe, like, sometimes if we are praising to somebody, that should be the behavior that everyone should have, because it makes feel better to someone, as well as we should praise ourselves as well.
0: Of course, that's what today's topic is more about, right? You should never ignore. Praise yourself enough. If you won't, your cup will be empty. You cannot give anything to anyone if you don't love yourself, you don't admire yourself.
1: True. So true. And we should also not have the jealousy attitude as well. For example, if some person is bragging or praising themselves, we should really say, oh, wow, yeah, that's really good that you have this or you did this. On top of that, if somebody is sad about that, they are talking negative, we should stop that thinking right away, and we should encourage them. See, you don't have this, but you can do this better. That quality helps each other, like for us to uplift every woman, is what I'm trying to say. Is this should be there in every woman's core nature, female's nature, or every human nature, basically.
0: Yes, absolutely, I agree too, right? Yeah, exactly. That's what my whole topic was all about. कि हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे आगे पीछे का सोसाइटी और नेचर, पूरे हमें इस तरह से ही बना देना चाहिए कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ अब्सॉर्ब करें,
1: अच्छी चीज़ें अब्सॉर्ब करें, अच्छा बोले. सामने वाला खुद के लिए भी अच्छा बोल रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करे, कोई खुद के लिए बुरा बोल रहा है तो उसे भी अप्रिशिएट ना करे, तभी बोले कि नो, दैट्स नॉट राइट.
0: करेक्ट, नहीं, हाँ, एकदम बिल्कुल सही है.
1: थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस. आई मीन, आई होप लाइक एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू इट, एंड या, आई एम रियली थैंकफुल दैट यू थॉट ऑफ दिस.
0: Absolutely. Thanks for calling, Unnati, and giving me at least motivation ki yes, ki someone is listening hai, yeah, and definitely I mean it, ki ye hame bahut karne ki zarurat hai yahan pe.
1: Absolutely. And if you get chance, I'll request for a song, Tarifa.
0: Tarifa?
1: Or this kit Tarifa chai diya tenu.
0: Okay. Next, maybe after one song. Sure.
1: Yeah,
0: likely.
1: That's okay. Okay. Sure.
0: Yes, definitely.
1: Yeah, thank you. Have a great day.
0: Thanks, Unnati, for calling us.
1: Keep spreading your generous words.
0: Thank you so much. I really appreciate it. Keep listening, guys.
1: Yeah. Sure. Thank you. Bye.
0: Bye-bye. And we are having another call. Hello?
1: Hello? Hi.
0: Hi. How are you?
1: I'm good. How are you, Bessie?
0: I am good. Yes, I recognized your voice.
1: Thank you. मैं बहुत टाइम से सुन रही हूँ. मुझे आपका टॉपिक से ना बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था, तो मुझे मेरे पास एक स्टोरी है, अगर आप लोग थोड़ी सी टाइम दे दो तो.
0: बिल्कुल, चलो सुनाइए.
1: एक स्नेक एक पोर्कोपाइन को वार्म, मतलब कि स्नेक को वार्म होना था, तो वो पोर्कोपाइन के पास जाती है कंफर्ट समझकर और बहुत टाइटली हग करके बैठता है. लेकिन पोर्कोपाइन के कांटे धीरे धीरे उसके शरीर में चुभता है स्नेक के, और स्नेक को दर्द होता रहा, खून निकलता रहा, फिर भी उसने पोर्कोपाइन को नहीं छोड़ता है. आखिर में वो ही दर्द उसके जान ले लेता है. तो हमारे जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है कि कभी कभी हम ना किसी इंसान को, कोई रिश्तों में ऐसे जुड़ जाते हैं, उसको अपने कंफर्ट जोन समझकर इतना टाइटली होल्ड कर लेते हैं कि वो रिलेशनशिप हमें अंदर से हर्ट कर देता है, जहां पे हम पेन फील करते हैं, हमें इंसल्ट फील होती है, टूटते भी हैं, फिर भी उसको हम, मतलब रिश्ता, प्यार, ये सब नाम लेकर पकड़ के रखते हैं. बट असली बात ऐसा नहीं है. जो तुम्हें अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है कभी, हमेशा मजाक बनाता है, ऊपर ऊपर दिखा रहे कि हाँ प्यार करते हूँ, तो वो प्यार नहीं होता है. बट हमें, हम तो इंसान है ना, तो इमोशन होता है. जब पहली बार, एक्चुअली ऐसा करना चाहिए कि जब भी पहली बार आपको महसूस हो, तब भी समझ जाओ शायद ये तुम्हारी जगह नहीं है, एंड डोंट गो बैक टू द सेम प्लेस वेयर यू लॉस्ट योर स्माइल ऑलरेडी. सो वक्त रहते रहते मूव ऑन करना कभी वीकनेस नहीं होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है. और हर अटैचमेंट भी लव नहीं होता है, हर कंफर्ट जोन भी तुम्हारे लिए राइट नहीं होता है. सो टाइम रहते ही समझ जाना चाहिए, खुद को प्यार करो, सेल्फ रेस्पेक्ट बचाओ, अपने वैल्यू समझाओ लोगों को. मेरे लिए कहावत है, क्या पता है प्राची, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ, ये जो आप बोल रहे थे ना कि सेल्फ लव, उसी से मुझे ये बात याद आई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी योर बेस्ट मोटिवेशन.
0: यस,
1: क्योंकि जब मिरर के सामने आप खुद को देखोगे ना कि यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट.
0: यस यस, एब्सोल्युटली, एकदम सही कहा आपने.
1: मैं इतने टाइम से सुन रही हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा था. मैं ये स्टोरी एक जगह पे सुन रही थी, तो मेरा इसी बात पे आपसे रिलेटेड हो गया सारी बातें, तो मुझे लगा कि मैं बताऊँ.
0: थैंक यू सो मच. Thank you for calling us and thank you for sharing such a beautiful story. And absolutely, बहुत motivational थी. And I'm sure कि सारे listeners को भी story समझ में आई होगी उनको कि exactly, yes. नहीं नहीं, बहुत अच्छे से समझाई आपने, मैं मना नहीं कर रही, पर मैं ये बोल रही हूँ कि कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत टाइम तक वो चीज़ का पेन सहने की जरूरत नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए चीज़ों को. लेट गो,
1: exactly.
0: Yep. थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग स्टोरी. एंड thank you for listening to us.
1: सारे motivational जो songs लगा रहे हो, I love that. I really enjoying.
0: और अभी एक song मुझे याद आया. सुनो, तुम्हारी ही बातों से मुझे एक song याद आया. Next time playing that song for you. Listen that.
1: Sure. Thank okay. you so.
0: Thank
1: much.
0: You. Thanks for calling us.
1: Thank you.
0: Wow. Amazing guys. Thank you for calling us. Unnati and Ramisa.
2: Not every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
3: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

Welcome back to Sincere Review, 99.9 FM, HD4, 101.9 FM, और 1490 AM. मैं हूं प्राची. एक इंसान है जो 24 आवर्स 365 डेज आपके साथ रहता है, ना कभी छुट्टी लेता है ना कभी दूर जाता है. वो है आपकी अंदर की आवाज. लेकिन एक सवाल, ये आवाज आपको मोटिवेट करती है क्या, या सिर्फ क्रिटिसाइज करती रहती है? कभी ग्लास गिर जाए तुरंत कितने केयरलेस हो, गलती हो जाए तो तुमसे कुछ नहीं होगा. और धीरे धीरे ये आवाज हमारी आइडेंटिटी बन जाती है. एक स्कूल में टीचर ने क्लास से पूछा, तुम सबसे अच्छे दोस्त का नाम बताओ तुम्हारे. सब बच्चों ने किसी ना किसी फ्रेंड का नाम लिखा. एक छोटी सी गुड़िया ने लिखा, माय बेस्ट फ्रेंड इज मी. टीचर ने पूछा क्यों, उसने कहा बिकॉज व्हेन एवरीवन गोज होम आई एम स्टिल विद माय सेल्फ. कितनी गहरी बात है ना, कितनी डीप. सब चले जाते हैं लेकिन हम खुद कभी खुद से दूर नहीं जा सकते, तो फिर ये रिश्ता इतना कड़वा क्यों हो? साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है सेल्फ कंपैशन. जब लाइफ मुश्किल हो तब खुद से वैसे ही बात करना जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं. अगर आपका दोस्त फेल हो जाए क्या आप उसे कहोगे तुम बेकार हो? नहीं ना, आप कहोगे इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बेटर होगा. तो फिर खुद को ये काइंडनेस क्यों नहीं देते हम? योर इमोशंस आर वैलिड बट दे आर नॉट योर आइडेंटिटी. फीलिंग डीपली इज अ गिफ्ट, लेकिन जब इमोशंस हमारे डेली पीस को कंट्रोल करने लगते हैं तब वो सिग्नल है कि हम खुद के पास वापस आए. आज रात सोने से पहले एक नोटबुक लीजिए, दो कॉलम्स बनाना. मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मैं सीख रहा हूं और प्रोग्रेस कर रहा हूं. मैं अच्छा नहीं दिखता और मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूं. आप हैरान रह जाओगे कि वर्ड्स बदलते ही फीलिंग्स भी बदल जाती हैं. जो आवाज अंदर से सुनता है उसे प्यारी बना ले, है ना. यही तो तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, खूबसूरत सिलसिला है. द लॉन्गेस्ट कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ इज द वन यू हैव विद योरसेल्फ. चेंज द टोन ऑफ दैट कन्वर्सेशन एंड यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ. एंड वी हैव अ कॉलर, वन सेकेंड, लेट मी गेट इट.

0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाय।
1: हाय प्राची जी, दिस इज नेहा फ्रॉम न्यूयॉर्क। हाउ आर यू?
0: अगेन, वाओ, थैंक यू सो मच फॉर
1: गुड
0: कॉलिंग नेहा। हाउ आर यू? आई एम गुड।
1: गुड गुड। बहुत दिनों के बाद मैंने कॉल किया। आई थिंक 2 3 हफ्ते पहले किया था, बट टाइम ही नहीं मिल पाता। सॉरी हाँ, बट आई
0: कोई
1: रियली
0: थिंग।
1: लिसन टू योर शो एंड आई लव टू कॉल यू ऑलवेज, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स इट्स नॉइजी अराउंड एंड आई कैंट कॉल यू। बट
0: अरे, आई एम हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। इतना ही बोल देना कि मैं सुनती हूँ। इज वेरी मच वैल्यूबल फॉर मी, थैंक यू।
1: जी, लेकिन आपका आज का टॉपिक सच में बहुत ही अच्छा है। लाइक यू नो, लव योर सेल्फ, राइट? उसी से मुझे मतलब कि कोई बात याद आ रही थी। लिटरली लाइक हम लोग चीजें करते रहते हैं डेली लाइफ में दूसरों को हैप्पी करने के लिए ना, वो अपने लिए नहीं करते, चाहे वो काम ही क्यों ना हो ना। काम भी हमारा कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी, हमारे बॉस को खुश करने के लिए हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और जब तक वो उस चीज को वैलिडेट करते हैं, हमारे को उस चीज की जरूरत भी नहीं होती ना कि बहुत देर से वैलिडेट किया, भाई तुमने अब तो, आई डोंट नीड योर रेज, आई डोंट नीड यू टू अप्रिशिएट मी एनी मोर, इट वॉज टू लेट, आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर सो मेनी मंथ्स और ईयर्स, अब तो मुझे रेज दे रहे हो, अब अपने पास ही रखो ना, लाइक दैट, राइट? सो एक्चुअली इट हैपेंड टू माई फ्रेंड रिसेंटली, एंड यस्टरडे आई वॉज स्पीकिंग टू माई फ्रेंड एंड ही वॉज लाइक, मुझे आज रेज मिली। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो लाइक कुछ, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो फिर मुझे ये समझ आया ना, बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग सो हार्ड फ्रॉम सो मेनी मंथ एंड फाइनली ही गॉट एक्नॉलेज। सो आई सेड, तुम्हें खुद को एक्नॉलेज करना है, डोंट वेट फॉर समवन एल्स टू एक्नॉलेज यू, राइट? इट्स नॉट अबाउट समवन एल्स एक्नॉलेजिंग यू, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट?
0: परफेक्ट, यस।
1: किसी और को ये वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि आप क्या है, राइट?
0: करेक्ट,
1: सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी इम्पोर्टेंस को खुद जानना,
0: एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अपनी अपनी वैल्यू खुद जानो और अपने
1: है ना?
0: आप को बेस्ट पोजीशन पे रखो। अगर आपकी लाइफ में कोई सबसे बेस्ट है तो आप खुद हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खुद को देख के ही कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ आई कैन डू दिस, राइट? किसी
0: यस,
1: और को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। आप हाँ, एक दूसरे को बूस्ट जरूर किया जाता है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को बूस्ट करना खुद जरूरी है, राइट?
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, एकदम सही कहा। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग
1: ऑफ
0: नेहा।
1: कोर्स ऑफ कोर्स। कैन यू प्ले अ सॉन्ग फॉर मी?
0: विच वन? टेल मी।
1: यू नो दैट सॉन्ग फ्रॉम वीर ज़ारा, इट्स कॉल्ड हम तो भाई जैसे हैं वैसे
0: अरे वाह,
1: रहेंगे।
0: नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस। यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली आई एम गोना प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू नेहा।
1: थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू।
0: थैंक यू, यस,
1: ऑलराइट,
0: लाइकवाइज।
1: ओके, बाय।

0: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Welcome back to Sun Zero Radio, Nara 99.9 FM, SD4 101.9 FM और 4090 AM. मैं हूं प्राची. दोस्तों, आज के इस सफर में हमने बहुत सारी बातें की. हमने जाना कि सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है. हमने समझा कि हम खुद को कैसे खो देते हैं. हमने देखा कि मिरर में सिर्फ चेहरा नहीं, एक कहानी है. हमने माना कि कंपैरिजन खुशी का चोर है. हमने अपनी अंदर की आवाज़ को प्यार देना सीखा. हमने अपने आप को माफ़ करना सीखा. हमने बाउंड्रीज बनाना सीखा. हमने अपनी इनर चाइल्ड से दोबारा मिलना सीखा. हमने अपनी बॉडी से दोस्ती की और हमने याद किया कि हर रोल के पीछे एक इंसान भी होता है. लेकिन शो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी इमेजिनेशन करवाना चाहती हूँ. आँखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आपके सामने आपका छोटा वाला वर्जन खड़ा है, वो बच्चा जिसके सपने बहुत बड़े थे, जो जल्दी खुश हो जाता था, जो बिना वजह हंसता था. उसे देखिए और पूछिए, मैं तुम्हारे साथ कैसा रहा? शायद जवाब आएगा, कभी कभी तुमने मुझे इग्नोर किया, कभी मुझे कंपेयर किया, कभी मेरी गलतियों के लिए मुझे पनिश किया. और फिर उस छोटे से वर्जन को गले लगा लिया और कहिए, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ. दोस्तों, आज के शो से 5 चीजें लेकर जाइए. 1, आपकी वैल्यू किसी और की कंफर्मेशन का वेट नहीं करती. आप इनफ है अभी इसी पल. सेल्फ लव मीन्स नोइंग योर वर्थ विदाउट नीडिंग समवन एल्स टू कंफर्म इट. दूसरा, साइलेंस भी एक जवाब होता है. जो लोग आपको अपनी एब्सेंस दिखाते हैं वो कौन है, उन्हें वो जवाब मानिए क्रेज के साथ. तीसरा, वॉकिंग अवे फ्रॉम व्हाट ड्रेन्स यू इज नॉट वीकनेस, इज द ब्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव. चूजिंग योर पीस टेक्स मोर करेज देन स्टेइंग. आपकी फीलिंग्स वैलिड है लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, अब अपनी इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा है. और 5, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, फिल योर सेल्फ फर्स्ट देन शो फॉर द वर्ल्ड. मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं वैल्यूबल हूँ, मैं बदल सकता हूँ लेकिन मुझे खुद से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्यार है. जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन आपको अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान के साथ बितानी है और वो इंसान है आप खुद. इसीलिए खुद के साथ अपना रिश्ता ब्यूटीफुल बनाइए. आज का एक प्रॉमिस खुद से, मैं खुद को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करूंगा, मैं अपने सपनों को दोबारा जगा दूंगा, मैं खुद से प्यार करना सीखूंगा. समझे? सो मैं हूं प्राची और आप सुन रहे थे सुन ज़रा रेडियो 99.9 FM, SD4 101.9 FM और 4090 AM पर. मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, सेम टाइम सेम वाइब. तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करते रहिए. और याद रखिए, आप बोलो जरा, मैं हमेशा सुन रही हूँ. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ इज द वन यू हैव विद योर सेल्फ. नर्चर इट, प्रोटेक्ट इट एंड नेवर स्टॉप चूजिंग योर सेल्फ. जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता किसी और के हाथ साथ नहीं, सबसे पहले खुद का खुद के साथ होता है. सो गुड इवनिंग, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑलवेज. एंड दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर ऑल.

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur-chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers. In Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक, प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश

टियागा। तुम्हें लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा, तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा। 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है, तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस है। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी ना खेले, उन्हें फिर से जवानी दे दे रब, चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले।

तुम्हें दिखता है पैसा, तुम्हें नहीं दिखती है टेंशन। तुम्हें दिखते हैं बॉडीगार्ड, पर तुम्हें नहीं पता कि वो क्यों है मेरे साथ। तुम्हें दिखते हैं मेरे दिन, तुम्हें नहीं दिखती है मेरी रात।

चिल्लाना तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। देखो ध्यान से

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

गुड इवनिंग रैले जुर्रम और पूरे आरटीपी एरिया को, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, सात से दस में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। उम्मीद है आप सबका ट्यूजडे बहुत ही शानदार रहा होगा। जो लोग अभी अभी अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर चुके हैं, सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज की बड़ी लोकल खबर यह है कि रैले डाउनटाउन में नए पेडेस्ट्रियन सेफ्टी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है, जिससे अब वहाँ वॉक करना और भी सेफ हो जाएगा। तो अगर आप वीकेंड पर वहाँ घूमने का प्लान बनाते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन खबर है। अगले 3 घंटे आपके सफ़र को म्यूजिकल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही ब्यूटिफुल गाने के साथ। एंजॉय करते हैं इस शो का ये पहला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

एंजॉय किया आपने गाना। गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। अगर आप इस वक्त i40 इस पर है तो भाई थोड़ा धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे, वहाँ हल्का सा कंस्ट्रक्शन डिले चल रहा है। वैसे जब आप ट्रैफिक में रेंग रहे हैं तो आपको एक मज़ेदार खबर दे दूँ। मैं एक डरम में एक नया देसी फ्यूज़न रूफटॉप रेस्टोरेंट खुल रहा है अगले महीने, जहां आपको अपनी फेवरेट कड़क चाय के साथ अमेरिकन ट्विस्ट मिलेगा। तो जाम में फंसे फंसे वीकेंड का वेन्यू डिसाइड कर लीजिए। तब तक के लिए गुस्से को मारो गोली, गाड़ी का एसी ऑन करो और इस मज़ेदार गाने को एंजॉय करो, क्योंकि पेशेंस रखना है, डिस्टेंस रखना है आगे वाले वाहन से, एंड डिस्टेंस रखना है टॉक्सिक लोगों से भी। बने रहिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM। रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लैपटॉप शटडाउन करके जो लोग एप्पल और आईबीएम के ऑफिस से निकल रहे हैं, लॉग आउट मतलब लॉग आउट, अब कॉर्पोरेट मेल्स को सुबह तक के लिए भूल जाइए। आपके लिए एक एक्साइटिंग अपडेट है, कैरी में अगले वीकेंड एक बड़ा साउथ एशियन कल्चरल फेस्ट होने जा रहा है जिसकी टिकट्स आज ही लाइव हुई है। लाइव म्यूजिक, ढोल और कड़क खाना, सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। तो भाई इस मिड वीक थकावट को दिमाग से निकालो और वीकेंड की इस वाइब को महसूस करो। इसी फ्रेश मूड के साथ आपको एंजॉय करना है निर्वाणा नाइट। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। वीकेंड में, इस वीकेंड में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, क्या क्या चीजें हैं बताऊंगा ना आगे। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4 101.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो में आ रहा पनीर वाला नाइट जर्नी में उस सब के दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपकी मूड को रिफ्रेश। लोग अक्सर मंडे ब्लूज की बातें करते हैं, लेकिन ये जो ट्यूजडे होता है ना, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग दिन है। ना वीकेंड पास है, ना मंडे का जोश। ऐसे में आपके मूड को शायराना अंदाज में बूस्ट करके एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। जी हाँ, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जिंदगी के इस ट्रैफिक और सफ़र का नाम ही तो चलना है दोस्तों। तो चलिए अब इस हसीन शाम को एक और खूबसूरत गाने के साथ एंजॉय करते हैं, क्योंकि गाना रुकना नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

वाले हैं और खेल के मैदान में इस वक्त बहुत बड़ी वाइब्स आ रही है ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की। जब आप यहाँ RTP में अपनी शाम बिता रहे हैं, वहाँ हमारे देश के एथलीट्स तिरंगा लहराने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। आज का दिन भारत के लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि एथलेटिक्स से लेकर बैडमिंटन तक कई बड़े मुकाबले होने वाले हैं। हम सब भले ही इंडिया से सात समंदर पार अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट जो है वो कम होना नहीं चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हैं या घर पर डिनर बना रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर चक दे इंडिया लिखना मत भूलिए। तो चलिए इसी जोश के साथ एक जोश भरा गाना मैं सुनाने वाला हूँ आपको। एंड जी हाँ, हम भले ही दूर हैं लेकिन जो हौसला है बढ़ाने का काम डेफिनेटली हमें करना है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स कांजरा रेडियो के पास लाइए। आज एथलेटिक्स के ट्रैक पर सबकी नजरें टिकी है हमारे स्टार रनर गुलवीर सिंह पर। आज उनका मुकाबला होने वाला है और पूरा देश और हम सब NRI भी उम्मीद कर रहे हैं कि पोडियम पर हमारा लड़का मेडल पहनकर खड़ा होगा। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मुकाबला हमेशा कड़ा होता है, माइक्रो सेकंड्स का खेल होता है, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है, पूरा भरोसा है। जैसे ही वहां से कोई गुड न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपको सुनाना चाहूँगा एंड आपको बताऊँगा। तब तक के लिए इस सस्पेंस के बीच जो एक्साइटमेंट है उसे बरकरार रखते हैं एंड एंजॉय करते हैं अगला एक गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM।